0: ये है लाइका रेडियो।
1: London, get ready for an unforgettable night.
2: Legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
1: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
2: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
1: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
2: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
1: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner, Leica Radio Network.
3: Big Boss mein is baar milega pardaan aur extra jeevan daan. Tab has tu mein jaan.
4: Big Boss Season 20, every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house, exclusively on Jio Hotstar.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
6: इज अ ग्रेट aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
0: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favourite shows. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: Leica Radio.
1: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
2: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months. Dubai is the place. 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting. Danube 11, 11. Danube Properties.
3: Danube 11, 11. खींचे दिखाओ
4: ये यार तुम्हें ढंग की फोटो क्यों नहीं खींच सकते
3: कहीं हाथ कटे हैं तो कहीं पैर और इसमें तो मैं लग ही नहीं रही हूँ इतनी मोटी लग रही हूँ
5: धमाल विद पति पत्नी और पंगा जल ओनली ऑन कलर्स टीवी
6: 40 मिलियन पीपल लिसन टू कमर्शियल रेडियो ईच वीक दैट्स 80 मिलियन इयर्स गिव अ टेक एम्प्लीफाई योर एडवर्टाइजिंग एट radiocenter.org
0: 7 स्टेशंस 1 पॉडकास्ट 1 मोबाइल ऐप Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk. Soothing you through the night and early morning, this is Leica Radio Midlands.

0: products advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales@leicamedia.co.uk.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
2: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
3: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F. Face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A. Arms. Can they raise both arms and keep them there? S. Speech. Is their speech slurred? T. Time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

जो तुद भावै साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक्खा।

है साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख है सिर भार।

जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवार।

0: Breakfast with Kajal. Like a
1: radio. I'd like to know कि क्या तोहफा लेके आया. मुझे भी एक तोहफा चाहिए. आज सुबह क्या तोहफा मिला पता है? Like a Radio London और Manchester में आज है राज बदन सिटिंग इन फॉर डॉनी ब्रास्को और मैं हूं काजल आपकी हुसरा आपकी दोस्त आपके साथ हूं 10 बजे तक ऑन लाइक अ गोल्ड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स एंड लाइक अ रेडियो बर्मिंघम और एक और न्यूज़ मैं शेयर करना चाहती हूं आपके साथ मैंने आपको ये पता था कि एक और रेडियो स्टेशन हम लॉन्च करना चाह रहे हैं तो आज से लाइक अ रेडियो ब्रैडफोर्ड यॉर्कशायर लीड्स भी लॉन्च हो चुका है और दैट ऑन डैब रेडियो फुल फॉर्म तो अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली ब्रैडफोर्ड में है तो प्लीज उनको बताइए कि अभी वो सुन सकते हैं लाइक अ रेडियो रीच यू कीजिए डैब रेडियो पे और वो सुन पाएंगे एंड दैट्स हाउ वी मेक लाइक अ रेडियो नेटवर्क मच बिगर कहीं भी दुनिया में आप सुन सकते हैं हमारी आवाज ऑन द ऐप लाइक अ रेडियो मोबाइल ऐप ऑनलाइन भी सुन सकते हैं और अगर आप यूके में हैं तो ऑफकोर्स एज यू नो ऑन 1035 मीडियम वेव इन लंडन And Dab Radio. So, 16 minutes past 7 is the time. Wakey, wakey, rise and shine. Abhi aapne suna do bahut hi achhe back-to-back songs. Film Dil se aapne suna Hum Pyar Karne Wale Chodh Hain. Phir Tohfa se aapne suna Tohfa Tohfa. Jo Tohfa hum leke aa rahe hain aapke liye aapko bahut hi acha lagega. Aur wo hai ye.
0: Bollywood Flashback with Kajal.
2: Kab koi mil jaye? Kaun keh sakta hai?
3: मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता
2: कभी आपने बारिश का संगीत सुना है
0: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719
1: Easy na
0: SBI UK Money Talk Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: And if I'm going to buy you 128.4 Indian rupees, make sure you transfer via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: And Kapil is the right one. The first one to get it right. Good morning, Kapil. Well done.

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: नहीं, समझो ना।
0: क्या समझू?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile.

0: Extra podcast update.
1: And this week's podcast update is actually our 33rd episode, hosted by Kush, who speaks to Minal Sambre, the founder of Sumaria Global Finance, to break down myths around business debts. Watch this episode on all streaming platforms, including YouTube, Amazon, Apple, and other major streaming platforms. It's Leica Extra Podcast.
0: Leica Extra is here.
2: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे
3: मॉर्निंग मंत्रा प्रेजेंटेड बाय मंत्रा हॉलीडेज योर फ्रेंडली हॉलीडे पार्टनर फॉर यूके यूरोप एंड अदर डेस्टिनेशंस फॉर योर मेमोरेबल हॉलीडेज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड बजट कॉल 0203-773-633 to book your dream holiday.
4: Kajal ka morning mantra.

0: Good morning. स्वागत है संगीत प्रेमियों का मनोरंजन की दुनिया में। मंगलवार वर्ष 2026 के सितंबर महीने की 15 तारीख। ये मंगलवार मुझे सोमवार जैसा क्यों लग रहा है? इसलिए भाई कि कल छुट्टी पर थे शर्मा जी। क्या कर रहे हैं आजकल ये बीच बीच में छुट्टियों का? भाई अब तो ऐसा ही चलेगा। एक जमाना था बहन भाइयों, जरूरी छुट्टी भी नहीं ली और इस तरह से काम किया मशीन की तरह से। पर वो भाई वो दिन कुछ और थे, उन दिनों में सेहत कुछ और थी और तबीयत कुछ और थी, हालत कुछ और थी। अब भाई धीरे धीरे ठीक ठीक करेंगे, लेकिन आपका साथ छोड़ने को जी नहीं चाहता, बस इसलिए स्टूडियो पहुंच जाते हैं गिरते पड़ते। तो साहब कार्यक्रम शुरू करते हैं शायरी से और काम चलाते हैं इस डायरी से। आज जागे हैं गुलिस्ता के मुकद्दर फिर से, झूम ए दिल के बहारों के जमाने आए। आज पत्ते भी थिरकते हैं हवा की लय पे, भोले पंछी भी कोई गीत सुनाने आए। गुल को शबनम ने कलेजे से लगा रखा है, आज भंवरा न कोई रस को चुराने आए। ये चमकती हुई सुबह है गवाह खुशियों की, दौरे गम बीत गया वक्त सुहाने आए। आइए वक्त का फायदा उठाएं।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Across Greater Manchester on 1377, 963 AM and DAB. And now also in Bradford and Leeds. This is Leica Radio.
0: आज जागे हैं खुशियों के मुकद्दर फिर से, झूम ए दिल के बहारों के जमाने आए। अरे बहारों के जमाने नहीं भाई, आप आए हैं तो बहार आई है।

0: धमाकेदार शुरुआत भाई, बहुत सारी बातें, बहुत सारे संस्मरण और बहुत सारी यादें आपके साथ साझा करने को जी चाहता है। लेट मी टेल यू, माय नेम इज रवि शर्मा और बहनों भाइयों, कल छुट्टी की मैंने नहीं आ सका, कुछ जरूरी काम थे, पर उसके लिए भाई ऋतु शर्मा को धन्यवाद देना नहीं भूलूंगा मैं। इसके अलावा भाई कल एक बड़ा त्यौहार था और वो त्यौहार चल रहा है, 10 दिन तक चलता है, उसके बाद फिर विसर्जन पे समापन होता है। गणेश चतुर्थी थी कल, बहुत सारे लोगों ने गणपति पूजन किया और एक संस्था तो आज भी कर रही है, 10 दिन तक चलता है। महाराष्ट्र में ये विशेष रूप से बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोग गणेश जी को घर पर लाते हैं, स्थापित करते हैं और पूरा घर मंदिर बन जाता है। बड़ी पवित्रता से, बड़े अनुशासन से, संयम से एक एक दिन एक एक पल गुजारते हैं और भाई शुद्ध खान पान, शुद्ध जो है व्यवहार और भाई भजन पूजन सब घर को मतलब बहुत पवित्रता से संवारते हैं। लेकिन एक और पर्व है आज भाई, उसका भी पवित्रता से संबंध है, मन की पवित्रता, शोधन एक तरह से अपने जीवन का, शरीर का, फिर मन का, अंतरात्मा का, ऐसे करते हैं लोग, उसे कहते हैं पर्युषण। तो भाई पर्युषण के लिए भी हम अपने श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे। ये रेडियो जो है लाइका रेडियो नेटवर्क आपके साथ भाई अपने सारे तीज त्यौहार, आपके सारे भाई वो रीति रिवाज वो सारे साझे करता है। तो भाई हमारी ओर से दिल की गहराई से आपको इन तीज त्योहारों की बधाई और शुभकामनाएं पहुंचे। जिक्र करेंगे भाई चिंतन में भी, पर्युषण ये एक ऐसा पर्व है जिससे भाई मन इतना हल्का और पवित्र हो जाता है और इसका बहुत सारे लोग अर्थ समझते हैं कि हम क्षमा करते हैं और क्षमा मांगते हैं। भाई गलतियां होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन उनका एहसास करके, पश्चाताप करके और उनको भाई जो है क्षमा याचना की, क्षमा ये बता दूं आपको कि कोई कमजोर आदमी नहीं कर सकता, बहादुरी चाहिए क्षमा मांगने के लिए, बड़ा एक स्ट्रांग विल पावर होनी चाहिए, तब कोई कह सकता है कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, मैं माफी चाहता हूं, कोई भी और गलती का पता भी ना हो, भाई शायद मुझसे कोई गलती हुई हो पूरे वर्ष में, तो मैं क्षमा याचना करता हूं, मेरे किए हुए कर्मों के लिए आप मुझे क्षमा करें और भाई मैं आपको क्षमा करता हूं, आइए एक नई शुरुआत करें, मैं सभी जीवों को माफ करता हूं और सभी जीव मुझे क्षमा करें। ये संदेश आज के समाज में भी बहुत प्रासंगिक है क्योंकि क्षमा से मन की कटुता, कड़वाहट दूर होती है और प्रेम, शांति तथा सौहार्द बढ़ता है। तो भाई इसे उस परंपरागत और भाई पौराणिक भाषा में मैं कहूँगा मिच्छामी दुखड़म। यदि मुझसे भी कभी किसी बात से आपको कष्ट पहुंचा हो तो कृपया क्षमा करें। आइए आगे बढ़े।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो नोट कीजिए बहनों भाइयों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके की ओर से आज का रेट एक पाउंड के बदले भारतीय मुद्रा में, इंडियन करेंसी में, दे आर गिविंग 128.9 रुपीज, 128.90 रुपए का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is Leica Radio. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। कनीश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg G sir 1099.
3: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Cell Leicester LE54UN.
4: Birmingham. Get ready as Surrenderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Dirty Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Dirty Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner, Laika Radio.
5: Celebrate Diwali with Chalo Let's Go and Chai Chopal. Diwali Gala 2026.
6: Saturday, 31st October at the Conference Suite, West Bromwich. Enjoy a vegetarian feast, live entertainment and family fun.
5: Adults £30. Children aged 5 to 12, just £15. And under 5s go free.
6: Book now at diwaligala2026.eventbrite.co.uk. For sponsorship, call Rakesh on 07436 594 323.
5: Sponsored by Terence Duffy and Diamond Heaven. Radio partner, Laika Radio. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.
7: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
5: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk. It's back and it's bigger.
6: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
5: On Sunday, 1st November 2026 at the Ramgarhia Centre.
6: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
5: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
8: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
9: Four beers, please, garçon!
8: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
10: Diljit Dosanjh non-stop on Laika Radio Punjabi. Listen now on the Laika Radio mobile app at laikaradio.com and on Alexa.
11: Chupke raat din aansu bahar.
12: Aapka naya station Laika Radio Ghazals bahut jald aa raha hai.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और बहन भाइयों, गीत सुना आपने फिल्म तीन देवियां से। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब। गीत में इतने लटके झटके खटके थे, ऐसा लग रहा था जैसे भाई सिनेमा देखते हुए लोगों को स्क्रीन भी हिलता हुआ नजर आया होगा। हीरो तो हिल ही रहे थे, इधर उधर उछलते कूदते, और भाई हीरोइंस और उसके साथ म्यूजिक की जो शब्दावली और ट्यून जो थी वो सारी इधर उधर होती नजर आ रही थी। पर बहुत मीठा गीत है, पुराना गीत है, लेकिन आज भी सुनने से भाई दिल भरता नहीं है, बार बार सुनने को दिल करता है। राइट, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना, और ये गीत लिया हमें इस मोड़ पर। एक सूचना है जो आपके साथ साझा करनी है भाई। लाइका रेडियो नेटवर्क इज़ प्राउड टू पार्टनर अप, यानी भाई उनके साथ मिलकर के हम एक सहयोग कर रहे हैं उन्हें, कौन सनातन इवेंट्स फॉर दिवाली स्टोरी विच अराइव्स एट ओवो वेम्बली अरीना ऑन संडे 27th September। Doors open at 4:30 PM with a student pre-show from 5 PM to 5:45 PM. ये पहला शो, और उसके बाद मेन परफॉर्मेंस जो है वो शाम 6:15 बजे से रात 9:30 बजे तक चलेगी, और वो अरीना में 27 सितंबर को, नोट कर लीजिए। क्रिएटेड बाय नितिन पालन MBE एंड फीचरिंग क्रिएटिव डायरेक्शन एंड कोरियोग्राफी फ्रॉम द बॉलीवुड डांस स्कूल टीम लेड बाय रोहन एंड Shruti Shah. The English language production brings the Ramayana to life with 4 chapters, a bespoke 7-song soundtrack and a full international cast. Bhai, थोड़ी सी झलकी तो यहाँ लंदन में दिखाई गई थी इसकी, और मैंने देखा था, बड़ा प्रभावित हुआ था मैं, लेकिन वो तो भाई लोगों को बताने के लिए कि थोड़ा सा ट्रेलर के क्या कुछ होने जा रहा है मंच पर, तो जरूर देखिएगा। टिकट्स के लिए नोट कीजिए www.diwalistory.com।
0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: 10:30 बज चुके हैं भाई। खबरों पर नजर डालें तो खबरों में ज्यादातर तो भाई समाचार हम सब कॉन्टिनेंट से लेते हैं, लेकिन यहाँ लोकल समाचार भी, ब्रिटेन के भी हम शामिल करते हैं। एक इवेंट जो बहुत चर्चा में है वो भारत में राजधानी दिल्ली में अभी अभी हुआ है, जिसका नाम है ब्रिक्स वाई सम्मेलन। आइए उससे समाचार शुरू करते हैं। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। ब्रिक्स समिट में भाई रशिया के जो है पुतिन साहब, चाइना के जिनपिंग साहब, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो होस्ट थे ही, और भी कई देशों के भाई अध्यक्ष शामिल हुए। अब उसकी चर्चा तो होनी चाहिए, क्या क्या वहाँ डिस्कशंस हुई हैं, और भाई शक्ति

और इस मुद्दे को धर्म के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। रामदेव ने कहा कि दुनिया पहले मांसाहारी भोजन से शाकाहारी भोजन की ओर बढ़ी और अब दुनिया वीगन जीवन शैली की तरफ बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं वो बौद्धिक दिवालियापन यानी अकल से दिवालिये हो गए हैं, शिकार हो गए हैं उसका। दरअसल आपको बता दें कि भारत मंडपम में जो वेन्यू था इस आयोजन का, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का, उसमें भाई गाला डिनर ऑर्गेनाइज हुआ था और गाला डिनर में पनीर, लबाबदार गुच्छी, मार्मिक, कैरेट बीन, पोरियल, ठक्कली, बेले सारू, एक से बढ़कर एक व्यंजन तैयार किए गए सब्जियों के द्वारा। ऐसे बीट रूट, रायता जैसे व्यंजन परोसे गए और इसके बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि भारत के 80% लोग मांसाहारी हैं। वेल, ये थी एक खबर। दूसरी, बहुजन समाज पार्टी, मायावती वाली पार्टी, भाई उनकी चीफ मायावती ने इल्जाम लगाया है कि सरकारी मशीनरी की गड़बड़ी की वजह से राजस्थान में लोकल इलेक्शंस में उनके कई उम्मीदवार हार गए। भाई इसमें अच्छी परफॉर्मेंस की है बीजेपी ने, उसके कई जो है कई सीटें उन्होंने जीती हैं, लेकिन इसमें बीजेपी को भी सोचने के लिए मजबूरी होना पड़ रहा है क्योंकि उसके बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्षेत्र में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उस पार्टी की जो है वो कई जो है सीटों पर हार हुई है। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि राजस्थान में हुए लोकल चुनाव में बीएसपी ने इस बार 19 सीटों पर अपने पार्षद जिताकर भेजे हैं। कई उम्मीदवार सरकारी मशीनरी की गड़बड़ी से दोबारा गिनती में जबरदस्ती थोड़े थोड़े वोटों के अंतर से, डिफरेंस से हार गए हैं। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर जनता से यूपीआई पेमेंट के जरिए वसूली की तैयारी करने का इल्जाम लगाया है। पार्टी ने दावा किया कि सरकार 2000 रुपए से अधिक के हर यूपीआई पेमेंट पर 0.5% चार्ज लगाने की योजना बना रही है। दरअसल 14 सितंबर यानी कल से जारी सरकारी अधिसूचना के अनुसार 2000 रुपए तक के यूपीआई पेमेंट पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये सरकार का पक्ष है। इंटरनेशनल खबरों में छाए हुए हैं ट्रंप, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी पत्नी बेटिना ने पुष्टि की है कि उनकी शादी का कुछ खर्च रूस के एक कारोबारी ने उठाया है। मामला तो बनता है फिर, इस कारोबारी का नाम उमर क्रेमलेव है जिसके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बड़े करीबी रिलेशंस हैं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और बेटिना की शादी मई में हुई थी। अब दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि बहामास के एक प्राइवेट आइलैंड पर ऑर्गेनाइज्ड इस शादी के फंक्शन की 2 रातों की मेजबानी उमर क्रेमलेव ने की थी। रशियन इजरायली फौज ने दावा किया है कि उसने कल सोमवार को गाजा में एक फौजी अभियान में हमास के 5 सदस्यों को मार दिया है जिनमें एक कमांडर भी शामिल है। कमांडर्स में 2 मेंबर्स को उन्होंने मारने का दावा किया है। द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली फौज और इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट ने हाल के हफ्तों में गाजा में अपनी आतंकवादी विरोधी यानी एंटी टेररिज्म कार्रवाइयों को तेज कर दिया है। बात क्रिकेट की करें, मोहसिन नकवी से महिला टीम के ट्रॉफी न लेने पर बीसीसीआई ने अब एक बयान दिया है। आपको बता दें कि भारत ने भाई एशिया ट्रॉफी जीती और एशिया ट्रॉफी जीतने के बाद मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया और भाई मोहसिन नकवी जो है पहले भी पुरुषों की टीम भी ऐसा कर चुकी थी। महिला एशिया कप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष आजकल मोहसिन नकवी हैं उनसे ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। इस मामले पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने कहा कि ट्रॉफी नकवी से नहीं लेने का फैसला टीम और अधिकारियों ने आपसी चर्चा के बाद सामूहिक रूप से लिया था, मिलकर लिया था। राजीव शुक्ला ने कल कहा कि ट्रॉफी को लेकर हमने आपस में बात की और फैसला किया कि हम उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, इसमें कोई झगड़ा या टकराव नहीं हुआ। एशिया कप जीतने के बाद भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली, लेकिन इस पर चर्चा बड़ी हो रही है। नकवी पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के चीफ भी हैं। इसके बारे में असदुद्दीन ओवैसी ने एक सवाल उठाया कि भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल ही क्यों रहा है। भाई ये इंटरनेट

0: मतलब एशिया कप जो है वो और भी कंट्रीज हैं, तो अगर नहीं खेलेगा भारत पाकिस्तान के साथ वो पहले वाली स्थिति होगी। लेकिन उनका सवाल भी जायज़ है, वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं, जब सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया है आईसीसी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे ज़रूरी हो सकता है, आप बीसीसीआई को टीवी राइट्स के जरिए पैसा कमाने दे रहे हैं, मतलब उन्हें पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, आप उस पर भी पाबंदी लगा सकते हैं, ओवैसी ने कहा। पाकिस्तान में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, अब एक लीटर की कीमत कितनी हो गई है, वल पेट्रोल की कीमत में 4.42 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, और इसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 380.24 रुपए प्रति लीटर हो गई है। सरकार ने नई कीमतों को आज से तुरंत लागू करने का फैसला किया है। हाल के दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की प्राइसेस में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। हूती विद्रोहियों ने कल दावा किया कि सऊदी अरब ने पिछले 24 घंटों में यमन के अलग अलग इलाकों में 54 हवाई हमले किए हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि सऊदी की एयरफोर्स ने F-15 और टाइफून लड़ाकू हवाई जहाजों के जरिए यमन के इलाकों को निशाना बनाया। उनके मुताबिक इन हवाई हमलों में ताइज, लहज, जोफ और मारिब होदेइदा के इलाके शामिल हैं। वाली ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है लाइका रेडियो Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: संगीत की तरफ लौट आइए। लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड रेडियो आप रवि शर्मा के साथ सुन रहे हैं। आइए मांगे, दुआ के लिए हाथ उठाइए।

स्वागत है श्रोताओं का मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। और इस दौर में हम आपका स्वागत चिंतन से किया करते हैं। थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और भाई आज के चिंतन के लिए आलेख हमें कई लोगों ने भिजवाए हैं, उनमें एक तो भाई हमारे परम आदरणीय मित्र आनंद जी वीर जी शाह मुंबई से भिजवा रहे हैं, याद दिला रहे हैं आज के पर्व के विषय में। हमारी बहन भावना पारेख करौली से आज के त्योहार के विषय में हमें याद दिला रही हैं, और हर वर्ष वो याद दिलाती हैं, हर वर्ष हमें चिंतन भेजती है आज के दिन के लिए। खासकर आज के वही चिंतन में हम कयूर शाह वेदा वाले पिनर से हमें आज के पर्व की भाई उन्होंने याद दिलाई एक जो है जीवंत घटना के साथ। और भाई हमारी स्टाफ मेंबर है अलका शाह, वो भी आज कह रही है कि भाई आज के पर्व के विषय में आप चर्चा करें। अतुल जैन ब्लैक पूल से आज के त्योहार के बारे में याद दिला रहे हैं। भाई आज एक नहीं दो दो त्योहार हैं, क्योंकि वो जो मराठा मंडल है मराठी मित्र हैं वो गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़ी धूमधाम से समापन कर रहे हैं, यानी गणेश विसर्जन कोई एक दिन के लिए कोई एक से ज्यादा दिनों के लिए स्थापित करते हैं भगवान गणेश की मूर्ति को अपने घर में। तो भाई वो आज हाउंसलो में बड़ी धूमधाम के साथ ये पर्व मना रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई उस उत्सव का भी चर्चा हो। और बता दें आपको भाई हम लोग जो हैं जिस क्षेत्र से आते हैं वो तीज त्योहारों का देश है, आध्यात्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय कई तरह के त्योहार वहां मनाए जाते हैं, कुछ मौसम के साथ जुड़े होते हैं कुछ इतिहास के साथ। हमारी बहन भावना पारेख लिखती है कि रवि भाई जैन धर्म के 24वें प्रॉफिट यानी तीर्थंकर भगवान महावीर शासन के युग के वो जैनी हैं, सत्य आचार्य चोरी नहीं करना व्यवहार अपना सात्विक रखना अहिंसा परिग्रह इन सब बातों की शिक्षा उनके जीवन से मिलती है, बिल्कुल मिलती है साहब। लेकिन आज के त्योहार के बारे में मैं सोच रहा था कि भाई जिसे पर्युषण कहते हैं क्या अभिप्राय है उसका, क्या मतलब छुपा है उसके पीछे। तो पता लगा भाई पर्युषण जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार माना जाता है। ये आत्मशुद्धि तप संयम यानी अपने आप को पवित्र करने, दूसरों पर तो भाई हमारी नजर रहती है दूसरों में हम कमियां निकालते हैं, लेकिन कभी अपने भीतर झांक करके अपने आप को प्योर पावन बनाने की प्रक्रिया को आप पर्युषण कह सकते हैं। संयम तप क्षमा और स्पिरिचुअल चिंतन ये उसका उत्सव है। आज क्षमा का संवत्सर भी है, आज क्षमा का संवत्सर है, स्वयं को पावन करने का अवसर है, अपने भीतर उतरना आत्मचिंतन करना पर्युषण है। श्वेतांबर जैन परंपरा में ये त्योहार आमतौर पर 8 दिनों तक मनाया जाता है। श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले सफेद कपड़े पहनने वाले, जबकि दिगंबर वस्त्रहीन तपस्या करने वाले उनकी परंपरा में 10 दिनों का ये पर्व 10 लक्षण महापर्व कहलाता है। क्या करते हैं लोग पता लगा ना, हमें हमारे भाई कयूर शाह ने देखिए बड़े सम्मान के साथ भोजन पर आमंत्रित किया था, हम समय नहीं निकाल पा रहे थे तो भाई हम चले गए इस वीकेंड पर उनके यहां। कयूर शाह ने भाई बड़े प्रेम से किसने तरह के व्यंजन हमें परोसे, बड़े प्रेम से खाना खिलाने लगे, तो हमने कहा भाई आप भी बैठिए साथ खाइए ना मिलके खाते हैं। तो भाई हाथ जोड़कर कहने लगे आप तो जानते हैं कि आजकल पर्युषण चल रहा है, पर्युषण में हम उपवास रखते हैं, क्या बात है भाई आप औरों को खिला रहे हैं स्वयं नहीं खा रहे हैं। जैन संप्रदाय के लोग उपवास रखते हैं ताकि भूख का एहसास उन्हें हो और फिर वो सबको भोजन कराएं, आत्मशुद्धि हो रही है उपवास से,
स्वाध्याय करते हैं, ध्यान और प्रार्थना करते हैं, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह जैसी भावनाओं पर कंट्रोल की कोशिश होती है, और सभी जीवों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव, दोस्ती। इस त्योहार का सबसे बड़ा संदेश है क्षमा यानी माफ करना, माफी मांगना, अहिंसा और आत्म सुधार। कई लोग अड़ जाते हैं, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हम किस बात की माफी मांगे। अरे कभी कभी आपको भी नहीं पता है कि आपने किसी का दिल दुखा दिया है, आपने कुछ ऐसा कह दिया है, तो इसलिए कहते हैं कि अगर किसी बात से, किसी काम से, किसी भी तरह से मैंने आपका दिल दुखाया हो, तो आज पर्युषण पर्व के अंतिम दिन, जिसे संवत्सरी कहा जाता है, हम क्षमा चाहते हैं। मिच्छामि दुक्कड़म। ये भाई, एक तो संस्कृत भाषा होती है, संस्कृत से भी पुरानी भाषा जो है उसका जो प्राकृतिक रूप है उसका वाक्य है, जिसका मतलब है कि यदि मैंने मन, वचन या कर्म से आपको किसी भी प्रकार का दुख पहुंचाया हो तो मुझे क्षमा करें, मेरे सभी दोष निष्फल हो जाएं। ये सिर्फ एक औपचारिक अभिवादन नहीं है, बल्कि विनम्रता, क्षमा, प्रेम का संदेश है। आप भाई किसी से कहेंगे ना, कितने झगड़े खत्म हो जाए साहब, मित्रों के बीच, कारोबारियों के बीच, व्यापारियों के बीच, समाज के बीच, देशों के बीच, गवर्नमेंट्स के बीच, कितने झगड़े समाप्त हो जाएं, अपने परिवार, मित्रों, जानने पहचानने वालों और जीवों से जैन संप्रदाय के लोग क्षमा मांगते हैं और कहते हैं खामेमी सव्वे जीवा खमन तुम्हें, खामेमी सव्वे जीवा, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं, सव्वे जीवा खमन तुम्हें, और सभी जीव मुझे क्षमा करें। भाई नम्रता के बिना तो ऐसा कहा ही नहीं जा सकता। और मैं फिर याद दिला दूं कि केवल बहादुर लोग ही क्षमा मांगते हैं, कायर लोग तो अकड़ दिखाते हैं, कायर लोग तो झगड़े को बढ़ाते हैं, बहादुर लोग झगड़े मिटाते हैं, प्रेम बढ़ाते हैं। अब आप कहेंगे हमने कोई गलती नहीं की है, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने जिंदगी में कभी कोई गलती ना की हो, है कोई ऐसा? ढूंढिए, बताइए, हम मिलना चाहेंगे, दर्शन करना चाहेंगे। गलतियां होती हैं, भूल होती है, हम गलतियों के पुतले हैं। आइए अपने मन को साफ करें, खुद के साथ इंसाफ करें, क्षमा मांगें और क्षमा करें।

किशोर कुमार और फिर लता मंगेशकर भाई दो अलग अलग गीत एक ही फिल्म से एक ही संदेश के साथ हमने आज के चिंतन के साथ जोड़ करके प्रस्तुत किए।

0: आज क्षमा का संवत्सर है। भूल सभी से होती है, गलती हर किसी से होती है। क्षमा याचना करके अपने शुद्ध को, अपने अंतःकरण को पवित्र बना लो। मन को पावन करने का शुभ अवसर है आज, क्षमा का संवत्सर है। पर्युषण पर्व की हम सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हुए भाई धन्यवाद दें आज के चिंतन में अपना योगदान देने वाले हमारे परम मित्र मुंबई में आनंद जी, वीर जी शाह, कल्याण जी, आनंद जी की जोड़ी के आनंद जी भाई जुड़े हैं हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच आनंद जी भाई। और कयूर शाह वेदा वाले भाई, आपका योगदान भी सर आंखों पर। पर्युषण की आपको भी बहुत बहुत बधाई। अतुल जैन, प्रतिभा जी, थैंक यू वेरी मच। और हमारी भावना पारेख बहन करौली से हमेशा जैन त्योहारों के विषय में हमें जानकारी भिजवाती रहती है। क्षमा याचना सिर्फ बहादुर लोग ही कर सकते हैं, कायरों के बस का काम नहीं है। क्षमा करना और क्षमा मांगना जीवन को पवित्र बना देता है, निर्मल बना देता है हृदय को। तो बहन भाई, ये था आज का चिंतन। पर्युषण पर्व की शुभकामनाएं देते हुए चिंतन को समेटते हैं। याद दिलाते हैं चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद आप सुनते हैं। आज का चिंतन अब खत्म होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं भाई, पैसे भारत भिजवाने तो रेट अच्छा चल रहा है आजकल। टुडे एसबीआई यूके गिविंग 128.9 रुपीस भारतीय मुद्रा में फॉर वन पाउंड। 128 रुपए और 90 पैसे का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर बाय ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio. This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Four stars, one stage, one date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Amantrika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 p.m. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.

0: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: और भाई भाई एक सूचना आपके लिए भाई वो ये क्रिकेट से जुड़ी हुई है और सूचना ये कि कैच लाइव एंड एक्सक्लूसिव क्रिकेट एक्शन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान दिलचस्प मैच भाई ये जियो हॉट स्टार पर आप देख सकते हैं थ्री वन डे इंटरनेशनल्स फ्रॉम 13th ऑफ सितंबर यानी संडे से शुरू हो चुके हैं ये मुकाबले और भाई थर्सडे 17 सितंबर तक चलेंगे तो दोपहर बाद 2:50 पर या 3 बजे के आसपास ये मैच शुरू होते हैं और आप जियो स्टार पर देखिएगा डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द जियो स्टार जियो हॉट स्टार ऐप नाउ जियो हॉट स्टार इज आल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप
0: Leica Radio Feel good track Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: और भाई ये गीत जा रहा है गणपति को घर में स्थापित करके घर को मंदिर बनाने वाले लोगों के नाम हमें पंकज और वंदना कहते हैं हमारे घर में गणेश जी पधारे हैं हम उन्हें बड़े आदर के साथ लेकर के आए हैं सर आंखों पर बिठाए हैं आप कोई गीत हमारी ओर से उनके लिए लगा दीजिए गणेश जी के लिए भाई बड़ा मीठा सा इनविटेशन मुंबई से शिखा लिखती हैं कि मेरे घर में भी गणपति आए हैं भाई आपको बता दें मुंबई में भी ये त्यौहार बड़े जोर शोर से मनाया जाता है और सुना है भाई सलमान खान भी अपने घर में गणपति की स्थापना करते हैं और फिर विसर्जन करते हैं भाई जिन जिन के घरों में गणपति जी आए हैं और जो नहीं अभी तक लेकर के आए हैं उनकी ओर से गणेश जी को मीठा सा निमंत्रण इस गीत के माध्यम से हम भिजवाते हैं कहते हैं भगवान गणपति का स्मरण करके जो काम शुरू किया जाता है निर्विघ्न यानी बिना किसी रुकावट के सफल हो जाता है विघ्न विनायक कहते हैं उनको विघ्नों का विनाश करने वाले

पंकज एंड वंदना और गीता घर में आप सब की, और जाहिदा भी कह रही है भाई, मैं हम भी उन इस उत्सव में शामिल हुए हैं। घर में पधारो गणपति देव।

देवी ना बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी भाई गणेश चतुर्थी की कल जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं और भाई जिन्होंने 10 दिन के लिए अपने घर में ये आयोजन किया उनको भी बधाइयां स्वाति थैंक यू वेरी मच एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं नानावती परिवार को गणपति उत्सव की बहुत बहुत बधाई

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Like a radio.
0: Like a extra podcast update.
4: Let me tell you about Laika Extra के नए एपिसोड के बारे में भाई. नया एपिसोड नंबर 33 अब उपलब्ध है, होस्टेड बाय खुश, और टाइटल है मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट रेजिंग डेट्स. ये भाई बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, फाइनेंशियल जानकारी है. खुश स्पीक्स टू मीनल सामरे, फाउंडर ऑफ सामरिया ग्लोबल फाइनेंस, टू ब्रेक डाउन मिथ्स अराउंड बिजनेस डेट्स. भाई बड़ी गंभीर जानकारी है, खासकर व्यापारी वर्ग के लिए, बिजनेस वालों के लिए. तो जरूर आप देखिएगा लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट, अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म.
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: Leicester Falcon Cash and Carry, festive shopping ka perfect destination. Kanish Idols ab available hain sabhi Falcon stores par. Onam Sandhya ke liye pre-bookings bhi shuru ho chuki hain. Falcon Snacks 300 grams ki full range, sirf £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 pounds, sirf £13.49. Suhana Khaman Thokla 500 grams, sirf £1.99 each, ya 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kgs सिर्फ £29.96. S मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू, और हर्जमन बटर घी 20 kgs सिर्फ £10.99.
5: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट, लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल, लिस्टर LE5 4UN.
6: जिंदगी बर्बाद हो गया.
7: Get ready, UK. Snill Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night.
8: Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
7: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
8: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
7: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
9: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
10: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
8: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
10: Also explore 2026 cruises
8: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
11: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक everyday grand.
12: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
13: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
14: Dubai is the place. 11,
13: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
14: Danu 11, 11. Danu Properties. 11.
0: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in three explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 p.m. exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now. Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
15: Lister. Navratri ni dhammakedar raton mate thai jao ready. KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026. 11th to 20th October live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes. Every night from 7 PM at Avanti Field School, Lister. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio partner, Laika Radio.
16: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
17: Leica Gold. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par Alexa pe bolo play Leica Gold. Aur online suno leicagold.com pe.

जानी दुश्मन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। भाई किशोर कुमार और महेंद्र कपूर ने साथ साथ आवाजें किसी गीत में शामिल कराई हैं वो ये है। बहुत कम गीत ऐसे मिलेंगे आपको जिनमें ये दोनों कलाकार साथ गा रहे हो। किशोर रफी साहब के गीत मिल जाएंगे, किशोरदा और मुकेश जी के गीत मिलेंगे, पर किशोर और महेंद्र कपूर कम गीत हैं। अगर कोई आपको सूझे तो बताइएगा। इसी बीच भाई बहुत सारे मैसेजेस आ गए हमारे पास। राजेश आप भिजवा रहे हैं शुभकामनाएं, मिच्छा में दुखड़म कह करके कि जाने अनजाने कोई भूल हुई तो भाई उनकी मैं क्षमा याचना करता हूं। थैंक यू राजेश। इसी तरह मानसी आपका संदेश आ गया है हमारे पास, थैंक यू। विजय मॉरिशस वाले सुन रहे हैं हमें, और हंसा वोरा जी कहती हैं आज मुझे गाने बहुत ही पसंद आ रहे हैं, सारे आप ही के लिए लगा रहे हैं, रख लीजिएगा संभाल के। स्लो वाली रानी जी, राजेंद्र राज जी थैंक यू वेरी मच, अच्छा जोक है पर मुझे घर जाना है शाम को, इसलिए मैं बीवी पे ऐसा जोक छोड़िए, क्या रखा सच्ची बात हमें छोड़िए।

0: ललित छत्रीशा जी थैंक यू वेरी मच आज का चिंतन आपको बहुत पसंद आया शुक्रिया कीर्ति सुनते रहिएगा चिंतन फॉरवर्डेड टू अमेरिका अमेरिका में आपने दोस्तों रिश्तेदारों को आपने भेजा थैंक यू अच्छा काम कर रहे हैं नेक काम कर रहे हैं आप विजय ये सटन वाले थैंक यू हिना निर्मला अरुणा पम्मी सिंह और श्रीनिवास जी थैंक यू वेरी मच आप भी करें मिच्छा मी डुकड़म
1: योनो एसबीआई यूके ऑनलाइन एंड वाया द एसबीआई यूके ब्रांच
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके भाई उनकी तरफ से बार बार आपको याद दिलाया जा रहा है कि अगर पैसे भारत भिजवाना चाहते हैं ना तो ये सही समय है अच्छा रेट है और सुविधाएं हैं सारी तो आज का रेट मैं बता देता हूं अगर आप भिजवाना चाहें तो आज का रेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो दे रहे हैं एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 128.9 रुपीज 128 रुपए और 90 पैसे यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like our radio.
3: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 p.m. on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागसन
5: वी आर फाइनली गोइंग होम फॉर द वेडिंग
6: आई नो आई कांट wait to see everyone. The whole family will be there.
5: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
6: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
5: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
6: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
5: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
3: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
7: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiyan.
3: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.

0: जाते हुए राही के आंचल में सिमटना क्या भाई। बात यह कि भाई वो ठीक है, गीत में तो ये कह रहे हैं शशि कपूर साहब पर पिक्चराइज्ड ये गीत ऐसा कह रहा है, लेकिन रियल लाइफ में शशि कपूर अपनी पत्नी के प्रति बड़े भाई वफादार रहे। उनकी पत्नी की डेथ के बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। बहुत से लोगों ने पूछा, जेनिफर कैंडल एक विदेशी महिला से भाई प्यार हो गया, विवाह हुआ, और जब पूछा था एयर पर नहीं पूछा लेकिन वैसे भी पूछा था, मगर आपने दूसरा विवाह क्यों नहीं किया, जबकि फिल्मी सितारे कई कई शादियां कर लेते हैं भाई एक के बाद दूसरी, लेकिन उन्होंने कहा कि वैसी कोई मिली नहीं। कैसी? जेनिफर कैंडल जैसी। उनसे उनके तीन बच्चे भाई करण कपूर, कुणाल कपूर और संजना कपूर, जो आजकल पृथ्वी थिएटर को देखती हैं। शशि कपूर हैं आर्टिस्ट ऑफ द वीक। उनकी फिल्मों के बहुत सारे गीत आपको सुनने को मिलेंगे इस सप्ताह।
1: Feel Good Track brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: आइए सुनते हैं ये गीत, और इसमें भाई एक सवाल का जवाब छुपा है, क्योंकि शशि कपूर तो बन गए राजा साहब, शम्मी कपूर बन गए लाट साहब, और जब राज कपूर साहब से पूछा गया कि जी सबसे छोटा भाई राजा साहब, उससे बड़ा लाट साहब, तो सबसे बड़ा भाई क्या, आप क्या हैं?

0: The Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और वैना भाइयों कुछ एक और संदेश आकर के जुड़ गए हैं हमारे भाई स्क्रीन पर और उनमें हमारे भाई संदेश में कुछ साउथ हॉल ट्रेवल के बारे में आपको एक जानकारी देनी है आगे चल करके फिलहाल तो ये जानकारी है जियो स्टार की ओर से और इसमें कहा गया कि भाई देयर आर 20th सीजन ऑफ बिग बॉस इज बैक 20वां सत्र जो है बिग बॉस का शुरू हो चुका है होस्टेड बाय सलमान खान एंड द शो एयर्स एवरीडे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार स्ट्रीमिंग एवरी एपिसोड अलोंग विद लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 हाउस जियो स्टार इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी तो भाई ये जानकारी हमें आपको देनी थी इसके अलावा कुछ और भी है और नहीं है
0: ये है लाइका रेडियो
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

कहीं नहीं जा रहा हूं भाई, अभी कहीं नहीं जा रहा हूं, कार्यक्रम का समय बाकी है, कुछ गीत बाकी हैं आपके नाम करने हैं। अनिल कुमार हमें चंपावत उत्तराखंड में सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी पसंद का गीत भी शामिल कर दीजिए, आज पहली बार सुन रहा हूं आपको। हाँ, पहली बार हो सकता है भाई, सुनते रहिएगा आप, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे गीत ढूंढ के लाया करेंगे हम, सुनाएंगे आपको। वत्सला जी आपका संदेश मिल गया, वियाना में अनिल सोनी जी, सीजर फर्नांडिस साहब, आप सब सो

0: भाई हम अकेले बिल्कुल नहीं है, हमारे बहुत सारे हम सफर हैं, हमारे लिसनर्स, हमारे दोस्त साथी, हमारे प्रशंसक. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी. नहीं जा रहे भाई, नहीं जा रहे, बोल दिया. मैं देख रहा हूँ कि आज जन्मदिन कौन मना रहा है. भाई फिल्मी सितारों के जन्मदिन तो बाली भाई ढूंढ के लाते हैं, लेकिन उनके अलावा भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रसिद्ध होते हैं. जैसे कि आज 15 सितंबर को विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है. कौन है? बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं भारत के, इंजीनियर हुए हैं. एंड शायद आपको जानकारी हो कि आज के दिन भारत में इंजीनियर डे जो है उनके नाम से उनके लिए मनाया जाता है. इंडियन इंजीनियर स्कॉलर स्टेट्समैन एंड दीवान ऑफ मैसूर. एक जमाने में भाई 1860 में वो पैदा हुए थे और अपने जीवन काल में उन्होंने अपने अध्ययन के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम किए. उनके ऊपर तो एक चिंतन प्रोग्राम में शामिल करना है, बहुत जल्द मैं सुनाऊंगा आपको. लेकिन नाम इतना मुश्किल है, विश्वेश्वरैया. हमारे राहुल गांधी तो बोल नहीं पाए थे, अटक गए कई बार, उन्होंने रिपीट किया फिर भी नहीं बोल पाए. पर वही साउथ इंडियन इंजीनियर थे विश्वेश्वरैया साहब. विश्वेश्वरैया मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स कहें उन्हें, जहाँ भी हैं, अब तो दुनिया में नहीं है, लेकिन साहब ऐसा वैज्ञानिक जो है बहुत बहुत गुणी थे. आज जन्मदिन मनाने वालों में एक पॉलिटिशियन सुब्रमण्यम स्वामी जी का नाम है. सुब्रमण्यम स्वामी 1939 में आज ही के दिन जन्मे थे. और भाई मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स टू स्वामी जी. स्वामी जी एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो जिस पार्टी में है उसी पार्टी के विरोध में खुल के बोलते हैं, कोई डर नहीं. और मजे की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के वो एमपी हैं. आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाया. वो कहते हैं कि निंदक नेड़े राखिए भाई, क्रिटिक जो है वो हमारे करियर में, हमारे जीवन में सुधार लाते हैं. तो सुब्रमण्यम स्वामी बड़े मशहूर क्रिटिक हैं अपनी ही पार्टी के, दूसरों के. सोनिया गांधी और गांधी परिवार के तो कट्टर विरोधी हैं ही. उनसे यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में मुलाकात हुई तो लंबी चौड़ी बातें हुई थी मेरी उनसे. बहुत दिलचस्प इंसान हैं. और भाई आज जन्मदिन मनाने वालों में एक और हमारे प्रिय मित्र, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू हुड्डा साहब. भाई रोहतक में जन्मे थे, इनका गांव है वहाँ जो रोहतक जिले में. और इनके पिताश्री भी पॉलिटिशियन थे, इनके बेटे भी एमपी हैं आजकल, और ये तो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत काम किए इन्होंने. भाई मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू भूपी भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब रोहतक से. और अब भाई आपके घर में कोई परिवार में कोई दोस्त रिश्तेदार जन्मदिन मना रहा हो तो उन्हें भी हमारी ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं. Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel. South Hall Travel याद दिला रहे हैं भाई, उनका संदेश है कि South Hall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact South Hall Travel today on 0208 574 8410. South Hall Travel is at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: Like a radio.

0: हाथ कभी नहीं छूटेगा, साथ कभी नहीं टूटेगा। क्या बात है भाई। एक हमारे मित्र हैं पवन जी। पवन भाई आपने बहुत सुंदर आयोजन किया, वो बागेश्वर धाम से बागेश्वर सरकार आए थे, तो भाई उनका बहुत बड़ा आपने कामयाब आयोजन किया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सिटी पवेलियन में आपने उनका दर्शन करवाया, उनसे का प्रवचन सुनवाया, थैंक यू वेरी मच। पर एक और पवन है जो चलते फिरते पवन है, हवा की तरह से, वो पवन की तरह से लहराते हुए, गाते हुए और शायरी बनाते हुए सफर करते हैं, ट्रक चलाते हैं बड़ा, और उसे लेकर के आप जा रहे हैं तो जाते जाते उन्होंने लिख के भेजा है, बर्मिंघम का गेड़ा शर्मा जी, ये हरियाणवी में गेड़ा भाई कहते हैं दौरा, वहां का फेरा लगा रहे हैं। बर्मिंघम का गेड़ा शर्मा जी, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा शर्मा जी, जिंदगी का हो कुछ भी ऐसा ही है फेरा शर्मा जी, पर शो तेरा बना देता है दिन ये मेरा शर्मा जी। भाई छोरे पवन, अगला गाना तेरे नाम आवेगा, सुनते रहना और गाड़ी ट्रक ध्यान से चलाना भाई, सावधानी से, बहुत कीमती है जिंदगी और बहुत प्यारे लिसनर हैं आप हमारे, थैंक यू।
1: Track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: I'm sure you want to send money to different countries. लेकिन let me tell you the rate first. एक पाउंड के बदले विभिन्न देशों के लिए लैम्फाई के रेट्स हैं। बांग्लादेश टका जो है वो एक पाउंड के बदले दे रहे हैं 165.93। श्रीलंकन रुपए 444.52। पाकिस्तानी रुपए 373.75। अफगानी 87.62 एंड इंडियन रुपी, भारतीय रुपए एक पाउंड के बदले इस समय वो दे रहे हैं 129.31।
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: Sone ka bhav. अरे साहब गोल्ड इस समय जो रेट चल रहा है 102.15 पाउंड्स पर ग्राम बिक रहा है।
3: राम ज्वेलर्स स्पेशलाइजिंग इन डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, 22 कैरेट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन्स एंड गोल्ड बुलियन बार्स। विजिट राम ज्वेलर्स ऑन 116 बेलग्रेव रोड लेस्टर और कॉल 0116 266 4278।
4: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
3: ये है लाइका रेडियो।
5: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
6: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। कनीश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ठोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर 10.99।
7: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN।
8: लेस्टर ना लिटिल गरबा स्टार्स तैयार थे जाओ। KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशन प्राउडली प्रेजेंट्स किड्स गरबा 2026 विद लाइव फ्रॉम इंडिया सैटरडे 17 अक्टूबर बपोरे 1 to 4 एट अवंती फील्ड स्कूल लेस्टर। 1 to 10 वर्ष ना किड्स माटे एंट्री जस्ट £5। टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट सोर्स और कॉल पीचेस 0795747330। मस्ती म्यूजिक एंड फुल ऑन गरबा फन। रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
9: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
10: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
9: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
10: गारंटेड
9: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
11: साउथ हॉल ट्रेवल
12: फोन 02085748410।
11: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
13: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
14: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
13: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
15: I happen to happy valley, feeling like a Diwali.
13: It's back and it's bigger.
5: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
13: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
5: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit DiwaliShoppingFestival.co.uk.
13: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
16: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
17: Punjab's biggest tunes, non-stop.

0: ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ .com ਤੇ ਅਲੈਕਸਾ ਪਲੇ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿਦ ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ।
1: एट सीट घर भाइयों, कार्यक्रम के समापन का समय हो गया है, यानी शर्मा जी के जाने का और बाली ब्रह्म भट्ट के आने का वक्त है। तो भाई एक बार फिर से मिच्छामी दुखड़म यानी पर्युषण की शुभकामनाएं देते हुए, क्षमा याचना करते हुए, क्षमा करते हुए और भाई गणेश उत्सव की भी बधाई देते हुए रवि शर्मा आपसे अनुमति चाहता है। हमारी आपकी अगली मुलाकात कल बुधवार को 10 बजे की खबरों के बाद। तब तक के लिए कीजिए उसे कार मेरा प्यार और मोहब्बत भरा।

0: मजा आ रहा है ना? यस निर्मला जी, आपकी नजर करते हैं, ये गीत आपको इतना पसंद आया तो. एंड दिस वॉज इन द पैरोडी वाज़न्ट इट.
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.

0: ये है 1998 का गाना, 1998, एंड आगे आप सुनेंगे गाना 1962 का. ये जो म्यूजिक था वो जतिन ललित का था, और नेक्स्ट गाना सुनिएगा.
1: दिस इज लाइक अ रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स.
0: रोशन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी की लिरिक्स.

वही सुरीली आवाज पंकज उदास जी की विद अनुराधा पौडवाल, फिल्म बहार आने तक 1990 की फिल्म। नेक्स्ट सॉन्ग इज फिल्म बदतमीज। रफी साहब ने इतना प्यारा गीत गाया है, सुनिएगा।

0: our basmati rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
2: No more worries for
3: Southall Travel, auto protected.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
5: The buy is an opportunity.

क्या गाना है ना, फिल्म बहार का 1951 एंड 1961, 10 इयर्स लेटर इट वाज रफी साहब सिंगिंग इन द फिल्म बॉयफ्रेंड. एंड नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स नन अदर देन सैंडी शाह कमिंग. यस, सैंडी शाह इज गोना बी आफ्टर मी. एंड नाउ on Laika Radio Midlands, it's going to be Raj Patan. Enjoy their shows from 4 to 7. I shall see you tomorrow. Thank you for all your lovely messages. Bali Brahmbhatt ka namaskar. Ijazat.

0: here playing Young Like a Radio. Chaz, gotta say hi to you. Good evening, my lovely. You said what a treat. Subah Shah, Mr. V. I know I was doing Donnie Brasco's show as a one-off this morning. I'm Like a Radio, Greater London, and of course, Greater Manchester and West Yorkshire will be broadcasting as well. Donnie Brasco's back tomorrow morning. He's giving me the confirmation that he's back. Relief. Right, moving on then. A quick reminder on my sequencer today. Then what number follows? After this, 2, 6, 12, 20, 30, 42, and then what? So 2, 6, 12, 20, 30, 42, and then what? If you know what it is, get in touch and let me know on my number. Raj Badden. Don't forget, also, Big Boss is back. The 20th season of Big Boss, hosted by Salman Khan. The show is every day at 9:30 p.m. on Colour TV and Jio Hotstar. And for the first time, Jio Hotstar is streaming every episode along with a live 24/7 feed from the Big Boss 20 house. Jio Hotstar is also available on Sky TV as an app as well. Right, on the way for you next. More hits. Back in a minute. Like a radio.
1: Drive is sponsored by Pepe's. Download the Pepe's app for exclusive deals and tasty offers. Plus, enjoy easy ordering whether you're in-store or relaxing at home.
2: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. कनिष आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 रुपीस से शुरू. और हर्ज़मैन बटर घी 20 केजी सिर्फ 10.99.
3: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
1: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड.
5: नमस्कार. માર્ચ 2027 માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માનો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન. આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટ સીન, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો. માત્ર 4499

0: Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
0: London, get ready for an unforgettable night.
2: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
0: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
2: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
0: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
2: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
0: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
3: Asian Achievers Awards. Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner Leica Radio Greater London. From Dudley to Aston. Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want.
4: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी सब कुछ फ्रेश और टेस्टी लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड मिमली में तो है लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में
5: Hi guys, this is Arbaaz Khan.
6: This is Alka Yagnik.
7: Hey everyone, this is Arman Malik here.
8: Hi guys, this is Taha Shabadusha.
9: Hello, namaskar, adab. I'm Shah Rukh Khan.
10: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Leica Radio.
11: Leica Radio. Leica Radio.
3: Pay close attention and name the film of this cracker classic.

0: The Radio Wally roller coaster flies back into the 90s. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 p.m. on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
2: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02203736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
4: It's back and it's bigger.
0: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
4: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
0: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
4: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
0: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: ये है लाइका रेडियो। This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
2: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ एट द बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल Mantra.
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: We're finally going home for the wedding.
5: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
4: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
4: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
4: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
6: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
7: खींचे दिखाओ
8: ये यार तुम इन ढंग की फोटो क्यों नहीं खींच सकते
7: कहीं हाथ कटे हैं तो कहीं पैर और इसमें तो मैं लगी नहीं रही हूँ इतनी मोटी लग रही हूँ
9: धमाल विद पति पत्नी और पंगा जल
10: ओनली ऑन कलर्स टीवी
11: इफ आई एम गोइंग आउट ऑन माय न्यू पैडल बोर्ड द लास्ट थिंग आई एम टेकिंग इज माय फोन राइट बॉयंसी एड फाइन बट मोबाइल माय होल लाइफ ऑन दैट फोन व्हाई वुड आई रिस्क लूजिंग इट इन द कोस्ट गार्ड
12: Okay, help's on its way.
13: Grab my hand!
14: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
15: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
16: You know how fans shout at football matches?
17: Oh, wake up!
16: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio... Your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
18: The sounds of love across the Midlands. The love sound. This is Leica Radio.

0: back and it's bigger.
1: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Ram Jewelers.
0: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
1: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
0: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
3: देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग
2: डेजर्ट सफारी
3: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम
2: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे
3: तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
1: साउथ हॉल ट्रेवल Protected.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
5: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
0: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months. Dubai is the place. 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting. Danube 11, 11. Danube Properties.
6: Danube 11, 11. बिग बॉस में इस बार मिलेगा प्रधान और एक्स्ट्रा जीवन दान दरखास्तों में जान
1: Big Boss Season 20, every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house, exclusively on Jio Hotstar.
7: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. The sounds of love across the Midlands. This is Leica Radio.